भर बस अब तो मशहूल कार में हूं, रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब तो मशहूल कार में हूं।

अच्छा कम्स टेक अस टू मदीना तैयबा, तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता, बसर अब जिंदगी अपनी दियारे खुद समय होती, वहीं जीता वहीं मरता वहीं गोरो कफन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, ऑल दोज हु हैव पास्ड अवे ब्लेस देम विद जन्नतुल फिरदौस, फिल द ग्रेव्स विद नूर। दोज हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, हूएवर इन द उम्मत ऑफ नबी अलैहि सलातु वसलाम हैज डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, Make his maghfirat, make her maghfirat. Bless every one of the kith and kin with sabr-e-jameel, ajr-e-azim. Inna Allah wa malaikatahu.

सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं तेरे गुलिस्तान में। सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं।

या तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। ए रसूले खुदा सरवरे अंबिया, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा।

या तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा, ए रसूल खुदा सरवर अंबिया, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। तेरे असहाब सबसे हैं आला हुए,

आप चाहे हमें ये करम आपका, आप चाहे हमें ये करम आपका, वरना हम चाहने के तो काबिल नहीं। आप

जिस जगह आपका कुर्ब मिलता न हो, द प्लेस वे आई डू नॉट गेट योर कुर्ब, योर क्लोजनेस, ओ माई बिलवड अल्लाह. इवन दो इट मे बी अ स्टेशन, इट मे बी अ स्टेशन ऑन द वे, इट मे बी अ मंजिल, बट इट इज नॉट माई डेस्टिनेशन. My manzil and my station, my destination is that place where I can get your qurb, your muhabbat, your marifat, your yaqeen. That is where. And where will we get it? In the company of the Ahle Dil. That is the place, because they have a heart. So if we're going to go into their company, then the noor that is generated from their hearts, it permeates. May Allah tabaraka wa ta'ala fill our hearts with the noor.

मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। ओ माय बिलव्ड अल्लाह, आई एम द वर्स्ट इन योर क्रिएशन। वी मस्ट कंसिडर अवर सेल्व्स द वर्स्ट। मुझसा कोई बदकार न होगा, देयर इज नो वन मोर सिनफुल देन आई। Which sin is there, my Allah, which I have not committed? From the time we became of age up till now, look at our lives.